0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि स्कूल में एयर कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से मौसम में उमस नज़र आ रही है, स्कूल में एसी होना ज़रूरी है। बच्चों को ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अडल्ट के कंपेयर में गर्मी होती है, तो इन पे विचार विनिमय जो है वो चल रहे हैं। एंड वेरी सुन मुझे ऐसे लगता है कि जिन भी स्कूलों में ये एसी की दिक्कत आ रही है ये सॉर्ट आउट की जाएंगी। एंड पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों के साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप वाला नाता रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल बच्चे हाइड कर रहे हैं, स्ट्रेस एंजाइटी उन्हें इतने लेवल की रहती है। तो थोड़ा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट आप आपके बच्चों के साथ रखते हैं तो इट विल बी रियली ग्रेट फॉर यू एज वेल, आपके बच्चों के लिए तो है ही। तो मैं यही कह रहा था कि अपने विश्वास में लेकर बच्चों के साथ आपने हर चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना।
1: All right, see, it hurts.

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड आज रैली के सक फार्म में 9/11 हीरोज रन का आयोजन किया गया। इस दौड़ में सैकड़ों लोग धावकों और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने हिस्सा लिया, जिसका मकसद 11 सितंबर को शहीदों को याद करना और नई पीढ़ी के लिए इन्हें जागरूक करना था। एंड आज सुबह सीढ़िया चढ़कर सुरक्षा कर्मियों को जो है वो श्रद्धांजलि भी दी गई है। एंड संगीत प्रेमियों के लिए डाउनटाउन रैली में इस वीकेंड हॉपस्कॉच म्यूजिक फेस्टिवल की शानदार वापसी हुई है। शहर के अलग अलग क्लबों और आउटडोर स्टेज पर कई लाइव बैंड्स परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें पूरी तरह से शहर में काफ़ी रौनक जो है वो फैल गई है।

यदि आप दिल्ली कम्यूटर है तो ध्यान दे, डिक्स पार्क के नए एंट्रेंस प्रोजेक्ट के काम की वजह से रैली में लेक व्हीलर रोड का एक बड़ा हिस्सा अगले 2 साल के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए वहां एक नया राउंड अबाउट्स बनाया जा रहा है, इसलिए इस रास्ते से बचकर निकले। अगर आप कोई नया रूट ढूंढना चाहते हैं तो घर से पहले निकलने के पहले ही कुछ ना कुछ नए रूट्स आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन पूरे 2 साल तक आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि आपका वो सॉल्यूशन बन जाए, क्योंकि 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक ये रास्ता जो है वो बंद रहने वाला है। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

वरना नाइट्स, और बातें करते हैं अब बॉलीवुड की कुछ खबरों की। माया नगरी मुंबई से चुन चुन के खबरें मैं लेके आता हूँ आपके लिए। तो मिर्ज़ापुर द मूवी जिस तरह से कहर मचा रही है, जिस तरह से हिट पे हिट हो रही है, इसके बारे में कुछ खबर है। मिर्ज़ापुर द मूवी को लेकर एक बड़ा विवाद जो है वह खड़ा हो गया है। रैपर रैपरिया बालम ने मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजकर आरोप लगाया है कि फिल्म में उनके सुपरहिट गाने शूरवीर का इस्तेमाल बिना उनकी इजाज़त किया गया है। एंड यही जो चीज़ है, ये मुद्दा काफ़ी देर तक चल रहा है, लेकिन फाइनली इसका रिजल्ट अब तक मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है। तो जैसे ही अपडेट आती है आई विल लेट यू नो शॉर्टली। एंजॉय करते हैं फिलहाल ये अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

वेल एंजॉय किया आपने गाना गाना था, वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायर पर निर्वाणा नाइट्स। तो बॉक्स ऑफिस पर हैवान की सुस्त शुरुआत, अक्षय कुमार और सैफ अली खान की नई फिल्म जिसके लिए ऑडियंस बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म के बाद बहुत सालों के बाद ये दोनों जोड़ी स्क्रीन एक साथ शेयर करने वाली थी। लेकिन हैवान की ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ठंडी रही, कोल्ड कॉफ़ी से भी ठंडी रही। इस फिल्म को जो है मिर्ज़ापुर से बड़ी टक्कर मिल रही है। इसी बीच सैफ अली खान ने बयान दिया है कि अब वो कुछ समय के लिए निगेटिव और विलन वाले किरदारों से जो है वो ब्रेक लेना चाहते हैं। एंड यू नो इट्स लाइक ये मूवी रीमेक भी माना जाता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, रीमेक मूवीज़ लोगों ने पहली देखी होती है और उनका रीमेक वो देखना आमतौर पर पसंद नहीं करते। सो लेट्स सी, अभी तो अच्छी नहीं चल रही, क्या पता आगे चल जाए।

नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड 25 गाड़ियां चोरी जाने की खबर तो आ चुकी है, मैंने जैसे आपको बताया। लेकिन बॉलीवुड में भी चोरी हो गई है, लेकिन किसके घर? अमीषा पटेल के घर चोरी हुई है। यस, एक्ट्रेस अमीषा पटेल के मुंबई वाले घर से लगभग 5 लाख रुपए के सोने और डायमंड के कंगन चोरी होने की खबर प्राप्त हुई है। पुलिस ने शिकायत के बाद घरेलू नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब चोरी के 2 मामले आज सामने आए हैं, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, अपनी कीमती चीज़ संभाल कर रखिए और किसी पे भी भरोसा मत रखिए। क्या पता किसकी नीयत कब खराब हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए। फिलहाल कैसे चल रही है आपकी ये इवनिंग? आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।

नायर पर निर्माता नाइट्स, तो मैं यही कह रहा था कि मेघना गुलजार निर्देशित दायरा में करीना कपूर खान मुख्य भूमिका में है, जबकि उनके जीजा कुणाल खेमू अपनी फिल्म वाइब लेकर आ रहे हैं। मतलब क्या बात है, पटौदी और कपूर एक साथ अपनी अपनी फिल्मों के द्वारा नजर आ रहे हैं। सेंसर बोर्ड ने इन दोनों ही फिल्मों को एडल्ट सर्टिफिकेट दिया है और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुणाल खेमू के बारे में अगर बात करूं तो कमाल का फिजिक उनका हमेशा ही देखने मिला है, एंड इस मूवी में, मूवी का नाम वाइब है, ये बहुत सारे रोल कर रहे हैं। आई गेस डायरेक्टर भी वही है, एक्टर भी वही है, स्टोरी भी उन्होंने लिखी है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ किरदार जो है वो कुणाल खेमू लेकर आ रहे हैं, पेश कर रहे हैं। एंजॉय करते हैं अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरापन निर्वाणा नाइट्स। अगली खबर यह है कि जाने माने म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक सलमान खान फिल्म्स की सोशल मीडिया टीम पर भड़क गए हैं। उनका आरोप है कि फिल्म हीरो की 11वीं एनिवर्सरी के मौके पर टीम ने उन्हें उनके काम का सही क्रेडिट जो है वो नहीं दिया। उन्होंने गुस्से में कमेंट डिलीट न करने की चेतावनी भी दी है। मतलब यार कभी कभी क्या होता है, फेस्टिवल जो होते हैं ना, सेलिब्रेशन जो होता है, बहुत कामों में हम लोग किसी को क्रेडिट देना ही भूल जाते हैं। अवार्ड फंक्शन में भी हमने देखा है कि ऐसा ही होता है, जिनको थैंक यू कहना होता है उन्हें कह नहीं पाते, तो ये जल्दबाजी में हो सकता है। बट अमाल मलिक का गुस्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों को लेकर हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंजॉय करते अगला ही गाना, बने रहेगा रेडियो नारा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

एंड वांगा ब्रदर्स की खुली चुनौती क्या है? चुनौती दो फिल्म मेकर संदीप रेड्डी वांगा के भाई प्रणय रेड्डी वांगा ने सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म स्पिरिट को लेकर क्रिटिक्स को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो रिलीज के बाद थिएटर्स में इस फिल्म को फ्लॉप करके दिखाए। एंड वांगा ब्रदर्स जो है वो उनके काम को लेकर तो काफ़ी सीरियस है, हम सबको पता है, तो फिल्म भी इस लेवल की है। एंड यार बाहुबली प्रभास इस फिल्म में है एंड स्पिरिट का तो लाइक पहले से ही फीवर जो है वो लोगों में देखा गया है, तो देखते हैं। और मुझे तो लगता है स्पिरिट तो ज़रूर कमाल कर दिखाएंगे यार, आफ्टर ऑल इट्स अ मेगा स्टार प्रभास एंड वांगा ब्रदर्स जो है वो तो है ही। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

एंड ऑस्कर विजेता संगीतकार A.R. रहमान ने कश्मीर की खूबसूरती की जमकर तारीफ की है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान उन्होंने बॉलीवुड के तमाम फिल्म मेकर्स से अपील की है कि वे कश्मीर आए और लोकल संगीतकारों के साथ मिलकर काम करें। A.R. रहमान एज अ एक्टर भी डेब्यू करने वाले हैं उनकी अगली म्यूजिकल फिल्म में, तो ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। A.R. रहमान के बारे में तो जितनी बात करें इतनी बात करना कम है, क्योंकि A.R. रहमान का जो म्यूज़िक है ये कभी हम भूल नहीं सकेंगे। इट्स लाइक वो एक दौर था जो वेस्टर्न म्यूजिक एंड अलग अलग टाइप्स का म्यूजिक जो है एंड कल्चर जो है म्यूजिक का A.R. रहमान ने लेके आया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में। सो इट्स लाइक ये बहुत अच्छी बात भी है कि एज अ एक्टर A.R. रहमान सर जो डेब्यू करने जा रहे हैं। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।

Yeah. भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्भरता नाइट्स। कैसे चल रही है आपकी आज की इवनिंग? एंड मैं बात करूं तो पार्टी तो चल रही है सब लोगों की, इवनिंग का मजा ही कुछ और है आज के। एंड वही चीजें है यार कि स्ट्रेस नहीं लेना है, एंजाइटी तो लेनी नहीं है, क्योंकि ये शिकार बनाते हैं डिप्रेशन का, और एक बार डिप्रेशन आ जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपना काम जो है वो ऑनेस्टली कीजिए एंड बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ ना कुछ नई इनकम सोर्स बनाने का आप सोच सकते हैं। तो मैं यही कह रहा था, 7 से 10 का ये टाइम मेरे प्यारे लिसनर्स के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा पर, निर्वाणा नाइट से शो रहता है, 7 से 10 मेरा शो चलता है। थैंक यू सो मच रेडियो नायरा एंड निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। एंजॉय योर इवनिंग, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

तेरे दोनों कान आज भर रहा हूं, तुझे शिव के द्वार पर कर रहा हूं। सुन, जो डमरू में गूंजे वो स्वर नहीं, स्वयं महादेव की पुकार है।

तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू।

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नाना 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: हम सब दिवाली इज ब्रिंगिंग अलाइव द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड यू डोंट वांट टू मिस इट. Get ready for an unforgettable celebration of Indian culture featuring spectacular performances, delicious food, exciting shopping, family fun, and so much more. Bring your family, bring your friends, and come experience the magic of Hum Sub Diwali. And calling all musicians, composers, and creative talents. Could you create the sound of Hum Sub? Enter our exciting Hum Sub theme song composition competition and let your music become part of the Hum Sub story. For complete details about the competition and Hum Sub Diwali, visit humsub.org.
2: Movie dekhi thi, pav bhaji khai thi, panchi gaye the.
3: Wrong! 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है. अरे भूली गया, आ डेट तो याद रखवानी छोए. गरबा लवर्स, आर यू रेडी? ऑन अक्टूबर बीजी रिधम अने रास लेने आवे छे गरबा नाइट. चनिया चोड़ी अने केडियू रेडी राखो. एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल. जॉइन अस फ्राइडे अक्टूबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स. Dance to the incredible beats of Amruta Manke and Nimesh Nagar with live music, delicious food, family, friends, and Raat Bhar Garbani Moj. Early bird tickets only until September 7th.
4: Tickets on Sulekha or check the Rhythm and Ras Flyer on Radio Naira's Facebook, Instagram, or RadioNaira.com. One beat, one circle, one community.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

साउथ एशिया रेडियो 10 to 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geek.

तो हुजूरवाला आप जानते ही हैं कि महबूब खान कौन थे। महबूब खान वो थे जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई जैसे कि मदर इंडिया, और ना पूछिए कितनी फिल्में उन्होंने बनाई। उनकी फिल्म का एक नगमा मदर इंडिया में, जो मदर इंडिया जो 1957 में बनी, उसमें लिया गया, बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यारा। और आप भी समाप्त फरमाएं आज की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है ये नगमा। मोहतरमा फरीदा शेख साहिबा ने महबूब खान की बर्थडे के मौके पर ये नगमा भेजा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नौशाद की मौसीकी और शकील बदायूनी का कलाम। आज मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, आज मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए।

दुनिया जो चाहे समझे समझा करे मुझे। अरे दुनिया जो चाहे समझे समझा करे मुझे, इंसान का रुतबा मिले अल्लाह करे मुझे। शकील बदायूं उन्हीं का कलाम नौशाद की मौसीकी मदर इंडिया 1957 की यह फिल्म मोहम्मद रफी की आवाज में फरीदा शेख साहिबा की फरमाइश पर। और इससे पहले वाला नगमा जो आपने समाप्त फरमाया ज्वेल थीफ फिल्म का था, 1967 में यह फिल्म बनी थी, एस डी बर्मन की मौसीकी के साथ, मजरू सुल्तानपुरी का कलाम, किशोर कुमार की आवाज के साथ, मोहतरम जनाब चंदजीत लाल जी, मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश पर। इससे पहले वाला नगमा साहिर लुधियानवी का कलाम था, मदन मोहन की मौसीकी थी और फिल्म गज़ल की ये गज़ल थी, 1964 में ये फिल्म बनी, बहुत अच्छी फिल्म थी। नगमा ओ शेर की सौगात किसे पेश करूं, ये लता मंगेशकर की आवाज़ में था। वैसे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी दूसरा नगमा था, मोहतरमा ज्योति करीर साहिबा की फरमाइश पर। और अब दूसरा जो नगमा, अमल के मैं कहता हूँ कि चौथा नगमा जो है पुष्पा गरीवाल का आया है, सेंट लुइस से, यानी के मजूरी से, यानी मसूरी से नहीं, मजूरी से आया है। और इस नगमे को हम डेडिकेट करते हैं अपने दोस्त मोहतरम जनाब आदित्य धनपाल की खिदमत में। आवाज़ है जोहरा बाई अंबाले वाली की। क्या बात है, क्या ज़माना था वो। और ये फिल्म हमने सोचा है आदित्य जी आपके लिए, क्योंकि ये फिल्म रतन 1944 की ये फिल्म है, जो आप इंजॉय करेंगे इस नगमे को। पानी घटा से लो अब लौट रहा है, आप जानते ही हैं कि पानी घटा से वापस आता है ज़मीन पर। अरे पानी घटा से लो अब लौट रहा है, और बरसों से इंतज़ार है, कब लौट रहे हो। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

घर को सजाया, दिल को सजाया, जिगर को आज। समझ फरमाएं कि घर को सजाया, दिल को सजाया, जिगर को आज। सुनता हूँ आ रहा हूँ मैं अपने ही घर को आज। टी एन मधु की कलाम था और मौसीकी थी नौशाद की। रतन वाज द फिल्म, 1944 में बनी, जिसका ये नगमा था और करण शायद उसके हीरो थे। जोहरा बाई अंबाले वाली की आवाज़ में अभी आपने समाज फरमाया। मोहतरमा पुष्पा गरीबवाल ने भी इसकी फरमाइश भेजी सेंट लुइस से और साथ साथ आदित्य साहब की खिदमत में। अगला नगमा सारंधा पंडित साहिबा ने भेजा है और फरीदा शेख ने भी उसी नगमे को भेजा है, क्योंकि हमें याद दिलाया है आशा भोसले की बर्थडे का मौका। तो पेश खिदमत है आप दोनों की फरमाइशें। क्या बात है, सैलाब ने उखाड़ दी बढ़ती हुई फसल। हाय हाय, अरे सैलाब ने उखाड़ दी बढ़ती हुई फसल, काली घटा ने मुझको घटा के ही रख दिया। यू आर लिसनिंग टू गीत।

अगर तेरी ये ख्वाहिश है करे बेदार मुझे, अगर तेरी ये ख्वाहिश है करे बेदार मुझे, किसी सुनी हुई आवाज से पुकार मुझे। खातिनो हजरात, नौशाद की मौसीकी थी और साथ साथ अनमोल घड़ी आवाज़ मेड इन 1946, जैसे पहले अर्ज किया जा चुका है, नूरजहां की आवाज़ में मोहतरमा गीता भट्ट साहिबा की फरमाइश पर, और कलाम था तनवीर नकवी का। जब तीनों बहनों ने फरमाइश दी है तो माताजी कैसे रह जाएंगी, तो उन्होंने फरमाइश दी है तो अब पिताजी कैसे रह जाएंगे, लेकिन इनके बहाने से हम इतने अच्छे अच्छे नगमे सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब हरभदन भट्ट साहब, जो आपने नगमा भेजा है अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में। अच्छा ये नगमा है, कब से कफस में सीने के पंछी जो कैद है, कब से कफस में सीने के पंछी जो कैद है, सर को पटख रहा है वो उड़ने के वास्ते।

0: इरादा शर्म के कारण बताया जा नहीं सकता। खातिनो हजरात, ये सच बात है कि बहुत से इरादे ऐसे होते हैं जो शर्म के कारण हम नहीं बता पाते हैं और बस इरादा अपने दिल तक ही रखते हैं, तो ज़्यादा इसमें बेहतर है। इरादा शर्म के कारण बताया जा नहीं सकता, मगर फिर दिल की धड़कन को छुपाया जा नहीं सकता। You are listening to Geet Bazaar Radio Naira की पेशकश। कलाम था समीर का, मौसीकी थी आनंद मिलन की और साथ साथ एलियर राजा की भी। फिल्म का नाम बेटा, 1992 की फिल्म है बेटा। अब तो बेटा भी बड़ा हो गया होगा। अच्छा जी, उदित नारायण एंड अनुराधा पोडवाल की आवाज़ थी, जैसे पहले अर्ज किया जा चुका है। मोहतरम जनाब हरिवदन भट्ट साहब की फरमाइश पर उनके परिवार के लिए। और अब पूर्णिमा गुप्ता का इम्तिहान की परीक्षा, दिल कांप रहा है और धड़क रहा है, देखते हैं इस बार वो परीक्षा में क्या लाई हैं। पहले तो पूर्णिमा गुप्ता जी, आप अपनी आवाज में इसको सुनाइए।
1: पिया को संदेशा मोरा कहियो जाए।
0: और अब मैं कहता हूँ कैसे कहूँ कि हमने पहचाना या नहीं पहचाना, हो सकता गलत भी हो, लेकिन इस शेर को सुनाने के बाद आपका नगमा सुनेंगे, शायद इससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने आपके नगमे को पहचाना। चंदा रे अब शान नमार, अरे चंदा रे अब शान नमार, धूप से लेके नूर उधार।

फलक पे जितने चांद तारे हैं, अरे फलक पे जितने चांद तारे हैं सभी खुर्शीद के नज़ारे हैं। प्रेम धवन का कलाम मौसीकी थी, खेमचंद प्रकाश साहब की जिद्दी फिल्म बाजवेर 1948। वाओ, लता मंगेशकर की आवाज़, ऑफ कोर्स मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहबा की परीक्षा इम्तिहान एग्जामिनेशन, और अब मोहतरम जनाब चंद्रजीत लाल जी और मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश सलाखों पर। जैसे कि मैं हमेशा के लिए कहता हूँ, मुकेश की आवाज़ में मेरा पसंदीदा नगमा भेजा है और ये भी याद दिलाया है कि हम कुछ देर बाद मौसम के बारे में भी बात करेंगे। या क्या बात है, अरे मौसम हसीन देख के कहना पड़ा मुझे, अरे मौसम हसीन देख के कहना पड़ा मुझे उस हुस्न का कमाल जो आया ना सामने।

0: मौसम से अगर डर है तो मौसम हंसी नहीं।
1: कहां से हो सकता है जब आप मौसम से डर रहे हैं।
0: सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाएं कहीं। मौसम से अगर डर है तो मौसम हसीन नहीं, मौसम हसीन वो है जो छोड़े कहीं नहीं।
1: शैलेंद्र का कलाम, मौसीकी थी सलिल चौधरी की, मधुमती वाज मेड इन 1958। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है मेरे दोस्तों तो देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। और ये देखिए कि इसके प्लाट को कितनी फिल्मों ने इनहेरिट कर लिया है, समझ लीजिए आप, या इंस्पायर किया है। गुलूकार इनके आप जानते हैं मुकेश थे, मोहतरम जनाब चंजीत लालियन, मोहतरमा कंचन लाल जी की आवाज़ में अपने नगमा समाप्त फरमाया। और हमेशा की तरह से मैं आपसे ये कहता हूँ कि 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, संडे को, इतवार को, रविवार को। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश, वी आर योर होस्ट सफरोज ताजान कॉलवेल एंड रवि चिरकुड़ी। और फिर जो हमेशा की तरह एक शेर आपके लिए ताज़ा लिख कर लाता हूँ, तो ज़रा समात फरमाएं। पूछा खुदा ने भेज दूँ दुनिया में अब तुझे, अरे पूछा खुदा ने भेज दूँ दुनिया में अब तुझे, मैंने कहा ना इन दिनों मौसम खराब है।
2: And we'll be right back after these very brief messages from Radio Naira.
1: You are listening to Geet Bazaar, Radio Naira ki Peshkash.

0: आपकी हर फरमाइश सर आंखों पर। आवाजें थीं मोहम्मद रफी, अफरोज ताज और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था कुछ ना पूछो। फरमाइश करने वाले थे नेवर माइंड। जैसे मैंने अर्ज किया, आपकी हर फरमाइश सर आंखों पर।
1: We respect your every request on Geek Bazaar, South Asia Radio, every Sunday 10 to 12 noon.

फिल्म आजाद का नगमा 1955, जैसे कि मोहतरम जनाब राजेश शर्मा ने फरमाया था, परसेपनी न्यू जर्सी से। और अब जनाब कैसर अल जाफरी जो हैं फरमाते हैं कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे।

0: ये रातें ये मौसम सभी कुछ तो है। अरे ये रातें ये मौसम सभी कुछ तो है, मगर मुंतजिर हैं ये चंचल हवा के।
1: ये रात

गुनाह के बाद भी दिल एक पल न माना। अरे तरके गुनाह के बाद भी दिल एक पल न माना, करते भी क्या जो देखा मौसम था आशिकाना।

0: दिल भी रंगीला हो गया मौसम के साथ साथ। अरे दिल भी रंगीला हो गया मौसम के साथ साथ, और छुट्टी न ली जो तूने दिल हाथ से गया।
1: You are listening to Geet Bazaar।

अगर आज मौसम में सावन ना होता, समझाए कि अगर आज मौसम में सावन ना होता, नशे में ये मखमूर गुलशन ना होता।

मौसम है फिर भी मौसम, उस पर बहार का। अरे मौसम है फिर भी मौसम, उस पर बहार का, इस पर भी रंग छाया तेरे इंतजार का।

जब तक हम थे बादल ना था और सभी गुलिस्तां सूखा था। अरे जब तक हम थे बादल ना था और सभी गुलिस्तां सूखा था, और चलते चलते मुड़ के देखा मौसम सारा बदल गया। इसमें कोई शक नहीं खातिनो हजरात, वक्त ने हमारे साथ बेईमानी की। जब तक हम थे हमसे नाखुश था, जैसे ही हम गए तो अच्छा होके दिखा दिया, यानी के 2 घंटे 2 मिनट में गुजर गए। यही तो मौसम की बेईमानी है और वक्त की। और फिर उसके बाद ये भी कहूँगा कि दिल अभी भरा नहीं, कहना पड़ रहा है कि वक्त पानी की तरह से हाथ से निकल चुका है। 10 से 12 हम सुबह, 10 से 12 हम शाम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं हर इतवार को, हर संडे को, एवरी संडे 10 to 12 noon एंड 10 to 12 midnight वी आर एट योर सर्विस विद योर फरमाइशेज। और चलते चलते मैं ये भी कहूँगा कि सुरक्षा व्यास की फरमाइश आई है अहमदाबाद से, उन्होंने कहा है कि मुझे कहना चाहिए अहमदाबाद। तो ठीक है मोहतरमा सुरक्षा व्यास, मोहतरमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फरमाइश भेजी अहमदाबाद गुजरात यानी कि इंडिया से। मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये नगमा है और देखें कि कौन सा नगमा आपने चुना है इतनी दूर से। और मैं कहता हूँ कि वक्त ने हमारे साथ बेईमानी की तो क्या हुआ, बेईमानी में भी तो मज़ा है। उर्दू शायरी में जो लफ्ज़ बेईमानी है उसका हमेशा निगेटिव कनेक्टेशन नहीं है, उसका निगेटिव मतलब ही नहीं, जैसे कि मेरा महबूब बड़ा बेईमान है या बेईमान बालमा वगैरह वगैरह। और हम भी चलते हैं कि देखें मौसम कैसा मिलता है हमको, वफ़ादार या बेईमान, और बेईमान या वफ़ादार, जैसा भी हो हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि बेईमान में भी कुछ मौसम का इरादा होता है। मौसम को बेईमान अब कहना बुरा तो है, सही बात है कि मौसम को बेईमान अब कहना बुरा तो है, और बरसात मधुबाला मिलवाए तो क्या कहने। मोहब्बत जिंदाबाद।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

रहा जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: तीन पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स। मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। कैसे चल रही है आपकी आज की इवनिंग? इवनिंग तो इतनी बेस्ट चल रही है क्योंकि कल होने वाला है बाप्पा का आगमन। बोला गणपति बाप्पा मोरिया, कल से गणपति का जो है वो आगमन होने वाला है एंड सारे लोग जुट चुके हैं गणपति बाप्पा के आगमन के तैयारी में। मतलब ये जो उत्साह होता है, ये जो रौनकें होती है, ये जो लाइट्स वाला फेस्टिवल होता है, ये कमाल का होता है। और बाप्पा जब भी आते हैं तो एक एनर्जी लेकर आते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया एंजॉय करते हैं इस शाम का ये पहला गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: the legends and we out.
1: 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? मूवी देखी थी, पाव भाजी खाई थी, पंजी गए थे.
2: रॉन्ग. 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है. अरे भूली गया, आ डेट तो याद रखवानी छोए. गरबा लवर्स, आर यू रेडी? ऑन अक्टूबर बीजी रिधम अने रास लेने आवे छे गरबा नाइट. चनिया चोड़ी अने केडियो रेडी राखो. एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल. जॉइन अस फ्राइडे ऑक्टोबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स. डांस टू द इनक्रेडिबल बीट्स ऑफ अमृता मंके एंड निमेश नगर विद लाइव म्यूजिक, डिलिशियस फूड, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रात भर गरबानी मौज. अर्ली बर्ड टिकट्स ओनली अंटिल सितंबर 7.
1: टिकट्स ऑन सुलेखा और चेक द रिदम एंड रास फ्लायर ऑन रेडियो नायरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और रेडियो नायरा डॉट कॉम. वन बीट, वन सर्कल, वन कम्युनिटी.
3: हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. मेरा नाम है नायाब मिर्हा एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा. एंड गेस व्हाट, आई एम ब्रिंगिंग माय शो राजकुमारी, माय पोएट्री स्टोरी टेलिंग शो राजकुमारी टू रैले दिस अक्टूबर 2nd. कैच मी लाइव एट द गार्नर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर प्रेजेंटेड बाय ओहो प्रोडक्शंस. टिकट्स जल्दी जल्दी निकल रहे हैं तो ग्रैब योर्स टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑलरेडी. सी यू देयर. थैंक यू सो मच. जल्दी मिलते हैं कविताओं के साथ, कहानियों के साथ, किस्सों के साथ रैले.
4: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
5: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
4: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स.
5: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
4: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
5: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
4: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

एंजॉय किया आपने गाना गाना था, वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड नॉस्टैल्जिया प्योर। गणपति फेस्टिवल का मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग मार्केट जाते थे, बापा की मूर्ति लाते थे, डेकोरेशन का सामान लाते थे एंड बापा के गाने एंड 10 डेज का जो कंपटीशन रहता था बच्चों के बीच, वो क्या ही दिन थे। तब फेस्टिवल की वाइब दो जो हुआ करती थी, ये अलग लेवल की ही हुआ करती थी एंड बहुत ही अलग लेवल का नॉस्टैल्जिया। गणपति बापा जब आते थे तो ये नॉस्टैल्जिया जो है क्या ही था। आज भी वही उत्साह एंड एनर्जी तो है एंड उसी उत्साह के साथ सेलिब्रेट करना है गणेश चतुर्थी का ये फेस्टिवल। 10 दिन बापा हमारे पास रहते हैं, आनंदमय वातावरण रहता है एंड उसके बाद बापा तो हमेशा ही साथ रहते हैं, लेकिन 10 दिन का ये फेस्टिवल इतना ही मज़ेदार होता है, मैं क्या बताऊँ आपको।

हेलो हाय कसक का एंड पहली खबर जो आ रही है वो आ रही है चैपल हिल और रैली के ब्रियर क्रीक इलाके में कार चोरी और गाड़ियों के शीशे तोड़े जाने की घटनाएं सामने आई है। मैंने कल भी ये चीज़ों के बारे में डिस्कस करा था। पुलिस के मुताबिक करीब 60 से ज़्यादा गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई है और सामान चुराया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज जाँच कर रही है और लोगों से सावधान रहने को कहा है। मतलब ऐसा है कि यार ये हुआ कैसे समझ में नहीं आ रहा, एक साथ इतनी गाड़ियों की चोरी होना, लाइक शीशे तोड़ के अंदर का सामान चोरना एंड ये चीज़ें ना वाकई में, मतलब ऐसे लग रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करना चाहिए। गाड़ियाँ इतनी रिस्क में आ गई है ऐसा लग रहा है। सो हर किसी ने अपने व्हीकल का जो है वो टेक केयर करना चाहिए, सावधान रहे, सतर्क रहे।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट, 7 से 10 हमारा ये शो चलता है। एंड कैसे हैं आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी गणेश उत्सव की तैयारियां? मतलब बापा का जो रूप है ना, इतना मनमोहक है, लेकिन हालांकि कुछ लोग बापा को अलग रूप में ही ढाल देते हैं। कोई बापा को पुष्पा बना रहा है, कोई बापा को कुछ बना रहा है, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। बापा का खूबसूरत रूप है, वो सुंदरता को आपको बरकरार रखना चाहिए। बापा की जो सादगी है, बुद्धि की देवता बापा माने जाते हैं, वो हिसाब से बापा की मूर्ति बनानी चाहिए। एंड मैं तो कहता हूँ ऐसी मूर्तियों पर ना तो बैन ही लगा देना चाहिए कि बापा अलग रंग में है, रूप में है, ऐसे करना। इट्स लाइक बापा इज़ बापा यार, कम ऑन। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी चाहिए। एंड मोदक तो मेरे भी बहुत फेवरेट है। मोदक इन दिनों में काफ़ी प्यार से बनाए जाते हैं और खिलाए भी जाते हैं। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना।
1: प्यार है इंडिया से, यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। अगली खबर बिजनेस जगत से है। मॉरिसविल में मशहूर फार्मा कंपनी नॉर्वेटिस अपना बड़ा विस्तार करने जा रही है, जिससे इलाके में रोजगार के नए मौके जो है वो मिलने वाले हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। जी हाँ, तो ये जो विस्तार होने वाला है नॉर्वेटिस कंपनी का, इन्होंने ऑफिशियली तो नहीं बट ऐसे बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी वैकेंसीज निकलने वाली है, तो ये वैकेंसीज का मौका मिल सकता है लोगों को। आप अपना करियर इनके साथ शुरू कर सकते हैं या फिर आप आपका करियर इनके साथ बढ़ा सकते हैं। फिर से दोबारा एक बार कहना चाहूँगा, नॉर्वेटिस इज़ द नेम ऑफ द कंपनी जो मॉरिसविल में विस्तार करने जा रही है। एंड यस, अपॉर्चुनिटी आती है तो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए एंड आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिलहाल कैसे चल रही है आपकी आज की शाम?